जोजलपा थौ नेपाल सम्ब चिन्चा सौ पी खुद बछलागा खस्टी थोरे डो नेपाल ख नेनादिस जिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार। संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा या त सिफारिसी अगुदु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालय सिंहदरबारे प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद अध्यक्ष बालेन्द्र सहाय नायसुईसँग मिग चुङ्गु बैठक सर्वोच्च अदालत या न्यायाधीश डाक्टर शर्मा याता प्रधान न्यायाधीश सिफारिस यागु बैठक लिपा सभामुख डोल प्रसाद अर्याल जानकारी ब्यादिगु ख। बैठक सभामुख अर्याल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम प्रतिनिधि सभा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे वो उपसभामुख रूबी कुमारी पिन सम्पत्ति कया दिगु ख। सिफारिस याता कया राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दहाल वो प्रतिपक्षी दलीय नेता आङदाम्बे विमती तयारी गुख। परिषद सिफारिस यागु संसदीय सुनवाई समिति अनुमोदन याना राष्ट्रपति नियुक्त यागु संवैधानिक व्यवस्था दु नियुक्ति लिपा डाक्टर शर्मा सुई स्वकमा प्रधान न्यायाधीश जुया दि थोयान न्याय परिषद प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति या नीति खुम न्यायाधीश याना संवैधानिक परिषद सिफारिस यागु ख। विक्रम सम्ब 2027 असार 4 गते पर्सा बिरगन्चे जन्म जुयादीमा डाक्टर शर्मा 2076 वैशाख 6 गते सर्वोच्च अदालत या न्यायाधीश जुयादी गुख। वेक्ला नेपाल ल क्याम्पसमा बीएल व भारतीय पुणे विश्वविद्यालयसँग एलएम यानादी गुदु। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस जुयादीमा डाक्टर शर्मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग श्रम कानून विद्यावारिधि यानादी गुदु। न्याय लागा कानून व्यवसायसँग दुहा झामा डाक्टर शर्मा 2070 जेठ 27 निशे 2072 मङ्सिर 26 तक उच्च अदालत अतिरिक्त न्यायाधीश जुया ज्याना दिगु ख। संघीय संसद सुनवाई समिति मिगया बैठकमा बैठक सञ्चालन नपाया कार्यविधि दिएको अगुदु। संवैधानिक परिषद भावी प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज शर्मा या ना सिफारिस याय व समिति वो बारे स औपचारिक पौ वे धुङ्कानी सुनवाई प्रक्रिया निजाकी प्रतिनिधि सभा व राष्ट्रिय सभा या मङ्का समिति या कथा दुगुथो समिति हपाङ्गु खुसी सभापति या सभापति सम्बोध नारायण श्रेष्ठ या त लिए धुङ्का कार्यसूचीगत कथन हपाङ्गु खुसी मिग बैठक सतगु ख। सभापति या दुज सचिव तुलबहादुर कण्डेल समिति या बैठक व सुनवाई या कार्यविधि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देखे गुजुले भ्रष्टाचार यागु दोपासा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्किना पान झिम्पेमा विरुद्ध सोङ्गु अर्ब खुइ निगु करोड धेभाव सिबे उप बिगो माग दाबियाना मुद्दा दायर यागुदु। आयोग विमानस्थल देखे गुजुले मु सम्झौता या प्रावधान अख ठेकेदार कम्पनी या त कर छुट बिया आर्थिक अनियमितता यागु दोपासा मिग विशेष अदालत मुद्दा दायर यानागु आयोग सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारी जानकारी व्यादिल। आयोग तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की नापा तत्कालीन सचिव पी शङ्कर प्रसाद अधिकारी व महेश्वर न्यौपाने तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य डुन्डुराज घिमिरे केवल भण्डारी विरुद्ध सोङ्गु अर्ब खुइ निगु करोड न्यागु लाख निदो ठेबा बिगो माग्दा बियासे मुद्दा दायर यागु ख। अथ्याना नागरिक उड्डयन प्राधिकरण या तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम व निवर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी उपसचिव युवराज पाण्डे शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी इन्जिनियर योगेश अर्याल विरुद्ध न वहे ठेबा बराबर या बिगो माग्दा बियाना मुद्दा दायर यागु दु। आयोग चिनिया कम्पनी सिएमसी या अध्यक्ष व परियोजना या व्यवस्थापक व कम्पनी व्यवस्थापक विरुद्ध नापा मुद्दा दायर यागुदु। खुसी बा डिनासोङ बिपी राजमार्ग सोनुलिपा चागुदु अस्टाई डार्बस डाइभर्सन देके धुङ्कानी मिग निसे सवारी ज्वलन्त न्यागु ख। प्रतिनिधि सभा कथा या अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व पर्यटन समिति बैठकके दुज पिसन लिपु लेख विशेषमा भारत व चीन सरकार या त नेपाल सरकार या थासँग छोगु कुटनीतिक नोट या त प्याँची पलाया कथा कयागु धारणा फङ्क गुदु। समिति या मिग चोङ्गु बैठकके दुज पिसन भारत चीन
निगु जलाखला नापाया स्वपुयता सन्तुलित देकुसे अतिक्रमणे लागु नेपाली भूमि लित हेता लिचोलाई कथ कूटनीति कुत मागु कनादिल समिति दुजोपिसा नेपाया भूमि लित हेत उच्चस्तरीय संयन्त्र निसुना प्रभावकारी कूटनीति कुत या मागुल बिषे व्यापार पार बहन व सीमायात सुव्यवस्थित सुझाव्यादिल बैठके समिति सभापति सुम्निमा उदास समितिया कार्यक्षेत्र वैगु कार्य दिशा विशेष नापा जानकारी ब्यादिल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव वैदेशिक लजगासन जुइगु ठगी नियन्त्रण यायता डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया न्ह्याज्या कागु कनादिगुदु प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिया मिगया बैठके मन्त्री यादव थ मन्त्री जुई धुङ्कानी नि न्यानु दुने वैदेशिक लजगा विभागे लापी पिदो मुद्दा मध्ये झिन्सोद मुद्दा त डिजिटलाइजेसन यायगु ज्यायानागु कनादिल मन्त्री यादव वैगु वादुने फुक्क स्थानीय तहसँग श्रम स्वीकृति बिगु व्यवस्था यानागु न जानकारी ब्यादिल वैदेशिक लजगा बालनागु लोभ केना थिथि दे छोया बिगु थासेन त धङ्गु ढेबा ठगेयागु दोपसा प्रहरी न्यामासित जोङगुदु सुनसरिया सुइनी दुमा राजकुमार तामाङ जापान छोया बिगु थासेन छमासीके झिन छगुलाक न्यादु दाङ्या सुई छ दुमा प्रकाश केसी अमेरिका छोया बिगु थासेन झिनीमासीके गुई सोङ्गु लाख काभ्रेया सुई सोदुमा दिल्ली मान तामाङ निमसिके झिम्पेङ्गु लाख ने यादो ढेबा ठगियाको दोपसा जोङ्गु दुसा थ्याना पाँच थरिया पी हेदोमा श्री हाङ दक्षिण कोरिया छोया बिगु दासे छमासिके झिन्गु लाख नि यादो वो स्याङ्जाया निच्या दुमा नमुना भण्डारी मकाउ छोया बिगु दासे छमासिके यागु लाख नेदो ढेबा ठगियाको दोपसा जोनागु प्रहरिया धापुदु राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस लसता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल थुगुसिया राष्ट्रिय पत्रकारिता शिर्पा नापा वरिष्ठ पत्रकार हनास थिति मनुतेत शिर्पा नापा हना देशनादिगुदु राष्ट्रपति भवन शीतल निवास मिगोसागु छगु च्यासुयादी राष्ट्रपति पौड्याल थुगुसिया वरिष्ठ पत्रकार हनास वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर झा व नम्रता शर्मायाता महती निगुलाक ठेवा नापा हना पौ देशनादिगुख अध्ययन राष्ट्रिय पत्रकारिता शिर्पा सा पत्रकार पी उमेश श्रेष्ठ भोला कुमार पासवान व रूपा गहत राज मती निगु लाख नापा शिर्पा पौ ललहना दिगुदु राष्ट्रपति पौड्याल निष्पक्ष पत्रकारिता औ सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण यायगु पत्रकारिया भाला खसा पत्रकार तेर्ता सुरक्षा लल ह्यागु सरकार मु भाला जुइगु कना दिगुदु ज्यासोले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा सरकार स्वतन्त्र प्रेस पक्ष दुगु कना दिसे स्वतन्त्र निष्पक्ष मर्यादित पत्रकारिता थौ मध्येक मगाको पला जुइगु कना दिल अध्ययन राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस नापा गोर्खा पत्र प्रकाशन सचिव नि खुद खे ठेङ्गु लसता मिग ये गोसागोको ज्याचोले संचार मन्त्री डा

समाचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा गोर्खापत्र नपिथङ मिग नाप्लाना दिगुदु मन्त्रालय जुगु नाप्लाय च्या वे कपि दति ग्वाली काल बिलयाता बल्ला केगु विशेष खला बोला जुगु परराष्ट्र मन्त्रालय धागुदु सा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादी नापा नेपाल नीति युरोपियन युनियन या राजदूत भेनोरिक लोरेन्जो नाप्लाना दिगुदु सिंहदरबारे दुगु मन्त्रालय मिग जुगु नाप्लाय ज्या वे कपि दति मिसा सशक्तिकरण बाल अधिकार संरक्षण लैङ्गिक समानता अपाङ्गता जुपी मनुतेगु अधिकार थकालिपी मनुते तहना कथमा दैगु व सामाजिक समावेशीकरण विशेष खलाबला जुगु मन्त्री सचिवालय धागु ख ल्यामतेता स्वरोजगार उद्यमशील देखेता सरकार बिगु सहुलियत कर्जा या नीति स्वदो सचिव स्वङ्ग स्टार्टअप परियोजना त नापाङ्गु खुसी ल्यागुदु नेपाल सरकार औद्योगिक विकास प्रतिष्ठान थुगुसिया स्टार्टअप कर्जा प्रवाह नीति स्वदो सचिव स्वङ्ग स्टार्टअप परियोजना तेता नापाङ्गु कथ ल्यागु ख थुगुसिया नीति प्रतिष्ठान झिदु शिव उप स्टार्टअप तेसा सहुलियत कर्जा नीति आवेदन बिगु ख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ या कार्यकारी बोर्ड नेपाल या नीति तब्या केको कर्जा सुविधा ज्याजु या यी तना निला तहा कि गु कोचिगुदु आइएमएफ बुधबार पिथङ्गु विज्ञप्ति कथन थो ज्याजो आ 2026 जुलाई 11 तक लिङ्का तै ये स्वनिगरले उपया चोङ्गु हल जोलस झाका म याता ट्राफिक प्रहरी चेक जाँच छक गुदु स्वनिग या मु सडक चुक व स्वनिग धुहाँ वैगो मु नाका नाक ढुङ्गा नापाया लाग्या विशेष ट्राफिक चेक जाँच अभियान ह्याक गुख उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सवारी जोल न्यूनीकरण याता नापाङ्गु थासे तसे यात्रु वाहक व मालवाहक सवारी जोलदथे विशेष निगरानी उपक गुख नेपाया छगुजका शिकार आरक्ष क्षेत्र ढोर पाटाने नापाङ्गो खुसी हिउ चितुवा लिया ख्याता क्यामेरा स्वागुदु झिङ्ग्यानो विकास सुङ्गु पुचस स्वदो निसमिटर निसेङ यादो न्यासमिटर तजागु थासे ठेङ्का नेकुगु सेन्सर नापाए क्यामेरा स्वागु ख नाउ र झारल वैधानिक शिकार जुगु ढोर पाटन शिकार आरक्ष तजाको हिमाली लाग्या हिउ चितुवा दैगु चुसान आतक लिया ख्याता दशा थाकुया चङ्गुदु नेपाली सेना न्युनियङ्कै हाई अल्टिच्युड सर्च एन्ड रेस्क्यु अभ्यास मुस्ताङे न्यागुदु खरब झोङ गाउँपालिका जोम समे दुगु नेपाली सेना इन्द्रबक्स गणे आयोजना समिगनिसिङ खोज व रेस्क्यु अभ्यास न्यागु ख तजागु हिमाली लाग अक्सिजन या मह आपालङ फमुइगु भौगोलिक विकटता या हुने सम्भावित जोखिम व झाँका मह यागु नापा खोज व उद्धार कार्य के अपुकेगु आज इन्द्रबक्स गण थुगुसिया नमुना अभ्यास गोसागु यागु धागुदु आदेश पिनेबुख इरान या सेना अमेरिकी सेना इरानी चिकन ट्याङ्कर त्यता तटीय लाग्या निशाना दिएको गु संयुक्त अरब इमिरेट्स या फुजै राहा बन्दरगाह लिक मेगु जहाज या ताना आक्रमण यागु दोप बिगुदु अमेरिका दक्षिण इरान या बन्दर खमिर सिरिको केसमा टाफिया मनु तेता हवाई हमला यागु इरानिया दाबुदु दाबिदु पश्चिमी तेहरान दथि इरानी हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय यानागु न धागुदु अमेरिकी सेना सेन्ट्रल कमान्ड सेन्ट कम हर्मुज समुद्र या लागा थगु नै नौ सैनिक बल दथि इरानी मिसाइल ड्रोन तचोको गतिस न्यायको डुङ्गा त पाके हमला याकगु धागुदु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरान या त यागु लप ट्यापिया संज्ञा ब्युसे अमेरिकी संसार माध्यम नपा खलासे युद्ध विराम छिले धुङ्कागु कनादिगुदु इजरायली जेले दुपी प्यालेस्टाइनी बन्दीपिस थपिन्ता इजरायली सुरक्षा कमियो सैनिक त पाके अमानवीय व्यवहार यातनाव यौन हिंसा यागु विषय पित हगु न अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यम तेसा धागुदु जानकारी थौ कोशी प्रदेश नापा ल्यौदुगु प्रदेश हिमालय पहाडी लागाया छुन थासे व मधेस प्रदेश मो थासे नापा ल्यौदुगु तराई लागा छगुनिगु थासे मल नापा लाप्सा तोय भतिस तस्क वा वैगु चपु कुहा वैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापुदु वङ्गु निपेगौले ये स्वनिगले यागु मापन कथा अधिकतम तापक्रम ख्वाज नि छगु निसे नि छगु फुटिङ यागु डिग्री सेल्सियस दति दुसा थाउन हिने ये सोनिगा क्वाज नि छगु निसे नि सुङ्गु डिग्री सेल्सियस दति चोनिगु धुकुमा दु थाउ सुते ये सोनिकले न्याता यी जुया झिम्पेङ्गु मिनेटे लुइकगु सूर्य ज्य शनिल खुता यी जुया पी च्यागु मिनेटे बी रेडियो नेपाल भाषा या समाचारको चाल चिता इले नेपाली भाषा या समाचार

सु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिर रिढाङनी दा ढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ सरकार से चु बैशाख निची ब्रे लानिरे सोमबार संघीय संसद ला चिसाङरी लेङ्गो थानबारी युल चोहो रामचन्द्र पौडेल ओन्छाङ मोइजेन लाभा निर्णय लाभामुला काइब्लोन्थेन ब्लोन सेङझाङ ला गेजाङ सिंह दरबारी तिनी चिबा ब्लोन सेङझाङ ला चिसाङ से युल चोहो पौडेल दा संसद री लेङ्गो थानबारी मोइजेन लाभाथेन होजा चिसाङरी मोकोन सांसद कादेदा पो किनबारी पाङबा निर्णय लाभा मुला बिसी सरकारलाई सुङबोन थिएन स्यार विज्ञान थिएन प्रविधि ब्लोन सस्मित पोखरेल से सुङबा मुला चुराङ लासिन चिसाङ से लोलो लोलो हुल्डी मुबा मेन्दो चुइङा नेपाली महावाणिज्य दूत थिएन वाणिज्य धुतला दान मुक्त लाभा मोक्युल श्रम घेन्दुन्दा बाध्यकारी श्रम महासन्धि 1930 सम्बन्धी 2014 प्रोटोकल नम्बर निचुईको अनुमोदन लाभारी संघीय संसदरी थानबारी स्वीकृति पिनबार राङबा निर्णयका दे लाभा मुला बिसी ब्लोन पोखरेल से सुङबा मुला लोलो लोलो विश्वविद्यालय री थान थान मुबा रो कुलपतिला सिफारिस लाभारी शोभा समिति से दरखास्त रिबा मुला उपकुलपति रि दाम्बा रि थेन सिफारिस समिति से गोरब्रे विश्वविद्यालय ता दरखास्त रिबा हिला समिति से त्रिभुवन विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पोखरा विश्वविद्यालय लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सनाम थेन रि विश्वविद्यालय मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय थेन राजर्षि जनक विश्वविद्यालय से थान थान मुबा रो कुलपति रि निवेदन रि बहिनला समिति से लोलो लोलो विश्वविद्यालयला रो कुलपति धामबारी थिएन सिफारिस सम्बन्धी एकीकृत गे विधि 2083 स्यार विज्ञान थिएन प्रविधि ब्लोन खाङला वेबसाइट रि थान बामुला युलचोहो रामचन्द्र पौडेल से कलाकार सृजना थिएन रिमठिम हुल्ला बङ हिन्ला बिची सुङबा मुला नातिकाजी हुलबाङ संगीत थिएन डेन पुरस्कार पिनबा वाल्डी लेङ्गो थान्छुबान युलचोहो पौडेल से ह्याङदा गिक नोन छोरी खिबा से ह्याङला कला सेमलेङ थिएन संगीत हिन्ला बिची सुङबा मुला युलचोहो पौडेल से संगीत ला बङ ग्रेन ताला सुङबान चु मोकोन ला घोसेबा से नोन हिन्ला बिची सुङबा मुला युलचोहो रामचन्द्र पौडेल से जिम्मेवार प्रेस से संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दा दातेला बिमा कुङबा शोभान सुशासन विकास प्रगति थिएन नोर समृद्धिला घ्याम्री नेपाली प्रेस से ज्यावा गे लाभा राङसे मानबा मुला बिसी सुङबा मुला सूचना थिएन संचार प्रविधि ब्लोन खाङसे सेङबा पुरस्कार पिनबा गेखोर्दी लेङ्गमो थान्छुबान युलचोहो पौडेल से चुताम सुङबा खिन्ला गेखोर्दी लेङ्गमो थान्छुबान संचार थिएन सूचना प्रविधि ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा से नेपाल लाई हुल्ठिम से प्रेस दा राङबाङ पिनबा मुला सुङबान सरकार से प्रेस थोरी खाजीबाई नुन बन्देज आलाबा बिसी सुङबा मुला ब्लोन तिमिल सिन्हा से राङबाङ छ्याम जिम्मेवारी थेन उत्तर दायित्व नुन थुइसी खाला सुङबान तथ्य थेन सत्यरी लाभा पत्रकारिता से जेखेन हुल्दा ज्यावा घ्याम्री बोर्ला बिसी सुङबा मुला गेखोरी हुल्चो पौडेल से सानगिर बोन गादे चन्द्र किशोर झा थेन नम्रता शर्मा भोला पासवान उमेश श्रेष्ठ थेन रूपा गहत राज दा डेन लास्युबा मुला डेन ताबा मेन्दो गादन लाखनिनी टाङ्गा थेन डेन चियो ग्याम डेन लाबा मुबा संवैधानिक सेङझाङला चिसाङसे ग्रेन ठिमखाङला छार ठिम्पोन छेनपोरी डाक्टर मनोज शर्मा दा सिफारिस लाभामुला काइब्लोन थेन ब्लोन सेङझाङला गेजाङ सिंह दरबारी काइब्लोन थेन संवैधानिक सेङझाङला चोह बालेन्द्र शाहला चोहबाङरी तिलमा चिबा चिसाङसे ग्रेन ठिमखाङला छार ठिम्पोन छेनपोरी डाक्टर शर्मा दा नियुक्ति लाभारी सिफारिस लाभाखिला काइब्लोन थेन ब्लोन सेङझाङला गेजाङसे गान्धी रि मुबा युङबा गिटी बालुवा साप्रा राङबा से कादे दाते ला ठिम अनुसार जेखेन तेबारी चु गामला ब्लोन खाङ थेन तह कादे दा पाङबा मुला चु गेजाङसे पिनबा निर्देशन दि गान्धी स्योङग्याम तेबा से कादे चुङबा ग्लुबा ठिम दा नाङसी लाबा ताम खाबासे ध्यान छेङना

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्तिक विजय झा सुनल झा मैथिली भाषामा समाचार। संघीय संसद दुनू सदन के अधिवेशन वैशाख 28 गते सोम दिन सँ शुरू होब जा रहल अछि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडिल मंत्री परिषद के सिफारिश में प्रतिनिधि सभा राष्ट्र सभा दुनू सदन के अधिवेशन आब वाला सोम दिन के 2 बजे सिंह दरबार में बैसबा सन आह्वान कयलनि अछि। संघीय संसद के नया भवन निर्माण सम्पन्न नहि भेला सँ एहि बेर प्रतिनिधि सभा के बैठक निर्माणाधीन संसद भवन के बहुउद्देश्यीय कक्ष में होयत। राष्ट्र सभा के एहि सँ पहिनहि संसद सचिवालय स्थित राष्ट्र सभा कक्ष में ई अधिवेशन संचालन होयत। नया संसद भवन निर्माण में संलग्न ठेकेदार कंपनी अवला जेठ 15 गति संघीय संसद के संयुक्त बैठक में बजट प्रस्तुत करबाक समय धरि प्रतिनिधि सभा कक्ष तैयार कर उपलब्ध करबाक मौखिक सूचना देने संसद सचिवालय के प्रवक्ता एक राम गिरी अय के जानकारी दिलन। सरकार बैसाख 28 गति सोम दिन संघीय संसद के संयुक्त बैठक के संबोधन करबाक लेल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडिल समक्ष आग्रह करबाक निर्णय कयलक अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सिंह दरबार में आई बैसल मंत्रिपरिषद बैठक से राष्ट्रपति पौडेल के संसद में संबोधन के लिए आग्रह करबाक आई बैठक में सब सांसद सब के उपस्थिति के लिए आह्वान करबाक लेल अनुरोध करबाक निर्णय भेल। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सस्मित पोखरेल जानकारी दिलन। आई बैठक से विभिन्न देश में रहल 15 नेपाली ऑनररी कौंसल जनरल तथा कंसुल के पदमुक्त करबाक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाध्यकारी श्रम महासंधि 1930 संबंधी 2014 के प्रोटोकॉल नंबर 29 अनुमोदन के लिए संघीय संसद समक्ष पेश करबाक स्वीकृत देवाक लगायत निर्णय सब कैल गेल मंत्री पोखरेल बतौलन। अही बीच सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश सिफारिश बीतल समय भेल गलती सबके ठीक करे के प्रयास भेल बतौलन। मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय सब सुनबाक क्रम में संचार कर्मी के जिज्ञासा में मंत्री पोखरेल न्याय क्षेत्र में सुधार होबाक चाही अय के मांग संबोधन के लिए अखन कार्य संपादन मूल्यांकन के आधार पर प्रधान न्यायाधीश सिफारिश के प्रयास भेल बतौलन। मंत्री पोखरेल पहिल बेर मुद्दा फरछोट आ कार्य संपादन सूचक के आधार पर प्रधान न्यायाधीश सिफारिश भेला सँ अखन के धर के सबसे निक सिफारिश मानव पड़त से बतौलन। काल्हि बैसल संवैधानिक परिषद के बैठक सँ सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश डॉक्टर मनोज शर्मा के प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश करबाक निर्णय भेल छल। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडिल कलाकार सृजना आ संस्कृति राष्ट्र के निधि भेल बतौलनि अछि। नातिकाजी राष्ट्रीय संगीत सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोह 2083 के संबोधन करैत ओ हमरा अहाँ सबके एकटा सूत्र में बांधे वाला तत्व कला साहित्य आ संगीत अछि बतौलनि। कला साहित्य आ संगीत से समाज में एकता सहिष्णुता समृद्धि के विकास में योगदान पहुँचला से राष्ट्रपति पौडिल की कहब छलन। राष्ट्रपति पौडिल संगीत के शक्ति अपरम्पार रहल चर्च करत सजिया भाषा संपत्ति राष्ट्र पहचान के आधार भेल बतौलन। ओ नेपाली संगीत के विकास में परम्परा आधुनिकता के संतुलन कायम करबाक चाही आवश्यकता रहल आ ओतबे महत्वपूर्ण रहल कहत परम्परागत धुन लय आ शैली के बचबित आधुनिक प्रविधि आ नवीन उपयोग मार्फत नया सृजना करब आजुक सर्जक सबके चुनौती अवसर दुनू भेल बतौलनि। राष्ट्रपति पौडेल मानवीय संवेदना के विविध पक्ष के अभिव्यक्त करबाक सामर्थ्य रहल गीत संगीत के क्षेत्र में लागल स्रष्टा सबके सम्मान करबाक लेल राज्य कंजूसाई नहीं करबाक चाही कहत सभ्य आ सुसंस्कृत समाज के एकटा परियाचक भेल बतौलनि छलथि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सस्मित पोखरेल अपना सबके चुनावी बाचा पत्र हिसाबे विद्यार्थी संगठन खारिज कने बतौलनि अछि। सिंह दरबार आई संचार कर्मी सब संग बातचीत करत नेपाल सरकार के प्रवक्ता पोखरेल स्वयं सब बाचा पत्र के निर्वाचन में समय में विचार विमर्श भेल आ बाचा पत्र के जनता अनुमोदन कर चुकला से विद्यार्थी संगठन नहीं रखबाक विषय में थप बहस आवश्यक नहीं भेल स्पष्ट कलन। विद्यालय सब तोकने मापदंड से अधिक भरना व वार्षिक शुल्क लेने शिकायत आयल चर्च करत ओहि विषय में नगर पालिका संघ गांव पालिका महासंघ के पदाधिकारी आ उपत्यका के मेयर्स फोरम के प्रतिनिधि सब संग विचार विमर्श भेल बतौलन। तोकल गेल मापदंड आ नियम के कार्यान्वयन के लेल संघ सरकार कोनो मदद यदि चाही त हम सब तैयार रहल मुदा ई मूलतः स्थानीय तह के दायित्व के बात भेला सब नियमन करय वाला निकाय अपन दिस से काज करबाक चाही से मंत्री पोखरेल के कहब छलन। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय नदीजन्य तथा खानिजन्य पदार्थ के उत्खनन संकलन के स्वीकृत मापदंड वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रचलित कानून बमोजिम मात्र कराबा संबंधित मंत्रालय तह के निर्देशन दिलक अछि।
यी कार्यालय देने निर्देशनमे निर्माणमे उपयोग हो वाला पाथर गिट्टी बालू माइट लगायत नदीजन्य खाना खानीजन्य पदार्थ के उत्खनन स्थानीय तह से होता नदीजन्य खानीजन्य पदार्थ के उत्खनन संकलन लजा लावके तथा बिक्री वितरण लगायत कार्य गैर कानूनी तरीका से भ रहा से शिकायत आ जानकारी प्रति ध्यानकर्षण बतौलन प्रचलित कानून मापदंड तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण संबंधी नीति बमोजिम विकास निर्माण कार्य में नतीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ के अभाव होब नहीं देवा लेल एहन स्रोत साधन के अधिक दोहन के निरुत्साहित क उत्खनन संकलन लजा लावके आ उपयोगकर्ता के व्यवस्थित पारदर्शी तथा टिकाऊ बनाबक लेल कहल गेल अछि। प्रधानमंत्री कार्यालय गृह मंत्रालय संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय अर्थ मंत्रालय वन तथा वातावरण मंत्रालय ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय राष्ट्रीय सतर्कता केन्द्र सब मुख्यमंत्री आ स्थानीय तह के पत्रचार कर आग्रह कयल गेल अछि। जताभावी उत्खनन अवैध संकलन तथा अनधिकृत ओसार पोसार कार्य के पूर्ण रूप में नियंत्रण करबाक लेल नियमित गश्ती परिचालन जोखिम क्षेत्र में स्थानीय वासी समेत के रोहबर में अनुगमन तथा अवैध उत्खनन संकलन तथा ओसार पोसार कार्यालय में तत्काल प्रहरी प्रशासन से नियंत्रण करबाक निर्देशन देल गेल अछि। नदी वन क्षेत्र खेती योग्य जमीन तथा बस्ती क्षेत्र में वातावरणीय विनाश नहीं होबा सन मात्र उत्खनन कार्य संचालन करबाक लेल स्थानीय तह सब के सेहो नदीजन्य सामान के उत्खनन समय दैनिक भिनसर 6 बजे से लकर साँझ के 6 बजे धरि तोका सन आवश्यक व्यवस्था मिलाबक लेल कहल गेल अछि। खानीजन्य पदार्थ के उत्खनन तथा उपयोग कला पर श्रमिक सुरक्षा वातावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदाय के हित के प्राथमिकता देबाक लेल उत्खनन से प्राप्त राजस्व के अहिना बर्बाद नहीं होबा देबा लेल वास्तविक कारोबार मोल के बिल बीजक जारी होबा के व्यवस्था सुनिश्चित करबाक तथा कारोबार बिना बिल बीजक जारी कर वाला अवस्था के निरुत्साहित करबाक लेल संबंधित स्थानीय तह सरकार वाला संघ के समन्वय में नदी तथा खनिजन्य पदार्थ के टिकाऊ उपयोग के लेल जनचेतनामूलक कार्यक्रम तत्काल संचालन करबाक लेल निर्देशन देल गेल अछि। एहि संबंध में भेल प्रगति तथा समस्या के संबंध में गृह मंत्रालय प्रत्येक महीना के पहिल हफ्ता प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में प्रतिवेदन पेश करबाक कहल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय महतरी धियापुता के राजनीतिक गतिविधि में संलग्न नहीं कराबा राजनीतिक दल तथा विभिन्न समूह के चेतावनी दलक अछि। प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव द्वारा जारी सूचना में आंदोलन बंद हड़ताल चक्का जाम धरना तथा जुलूस जेहन गतिविधि में धियापुता के उपयोग नहीं करबाक लेल आग्रह कयलक अछि। प्रशासन बीतल समय विभिन्न राजनीतिक दल समूह व संगठन अपन राजनीति के स्वार्थ पूरा करबाक लेल धियापुता के संगठित कर आंदोलन तथा प्रदर्शन में उपयोग कऽ सकबाक संभावना प्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भेल जनौलक अछि। सूचना में बाल बालिका संबंधी ऐन 2075 के दफा 66 उपदफा 20 के खंड 6 हिसाबे धियापुता के कोनो प्रकार के राजनीतिक प्रायोजन के लेल उपयोग करब वा संलग्न करब बाल बालिका विरुद्ध के कसूर मानल जात उल्लेख कयल गेल अछि। प्रशासन कोनो राजनीतिक दल व समूह के अपन स्वार्थ पूर्ति के लेल बाल बालिका के कोमल मनोविज्ञान आ भविष्य सं खेलवाड़ नहीं करबाक लेल सचेत करौलक अछि। सरलाही के बढ़हतवा में प्रहरी 16 वर्ष की एक बालिका के ब्याह रोकलक अछि। बढ़हतवा नगर पालिका वार्ड नंबर 6 मुसर बस्ती में बाल विवाह होबय लागल सूचना प्राप्त भेलाक बाद ओतय प्रहरी पहुँच कर विवाह रोकलक अछि। 16 वर्ष के बालिका के आबयवला रवि दिन सरलाही के चंद्रनगर गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 पोखरिया में विवाह के कार्यक्रम तय भेल छल। स्थानीय से बाल विवाह होबय लागल सूचना प्राप्त भेलाक बाद अभिभावक के समझा बुझा कर विवाह रोकल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय बढ़हतवा के महिला तथा बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा सेवा केन्द्र के इंचार्ज एवं प्रहरी निरीक्षक सुषमा कठायत के जानकारी दिलन। आ मौसम समाचार जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के महानिर्देशक डॉक्टर अर्चना श्रेष्ठ आबय वाला मानसून 2026 के पूर्वानुमान तथा आई के संभावित प्रवाह के संबंध में गहन अध्ययन आ विचार विमर्श भ रहल बतौलन अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित मानसून फोरम में महानिर्देशक श्रेष्ठ बीतल के समय में मानसून समीक्षा करत आबय वाला मौसम में भ सकबाक वर्षा तापक्रम के अवस्था के संदर्भ में प्रस्तुत कयल गेल तथ्यांक सब नीति निर्माण आ विकास योजना के लेल महत्वपूर्ण आधार प्रदान करत से बतौलन। ओ विभाग के अंदर उपलब्ध प्रविधि जनशक्ति क्षमता अध्ययन अनुसंधान तथा अंतर्राष्ट्रीय मौसम तथा वैज्ञानिक संस्था सब के सहयोग के आधार पर मौसमी पूर्वानुमान कर रहल जानकारी दिलन। विभाग वर्ष के चारों याम के लिए ऋतुगत पूर्वानुमान करबाक लक्ष्य लेने चर्च करत अखन 3 याम के पूर्वानुमान शुरू भ चुकल आब प्री मानसून के पूर्वानुमान शुरू करबाक तैयारी भ रहल बतौलन। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार
गत फेब्रुअरी 28 स्ट्रेट अफ हर्मुज के समुद्रिक नाका बंद भेल कारण लगभग 1500 से अधिक मालवाहक जहाज खाड़ी क्षेत्र के समुद्र में ठप भेल अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन जनौलक। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन के महासचिव ओरसेनियो डोमिगेज पनामा में टिप्पणी के क्रम में अखन 20,000 चालक दल के सदस्य आ लगभग 1,500 जहाज खाड़ी में फंसल जनौलक। वो समुद्री नाका से विश्वव्यापी रूप में खपत हो वाला उत्पादन के अधिकांश ढुआनी होत चर्च कलन। उद्योग व्यवसायी समुद्री संगठन के प्रतिनिधि के प्रभावित समूह के संबोधन करत डोमिंग जी फसल चालक दल के सदस्य अन्य देश से हरेक दिन नियमित काज के लिए जा रहा निर्दोष व्यक्ति हुनका सबके नियंत्रण से बाहर के भू राजनीतिक परिस्थिति के कारण इस क्षेत्र में फसल जनौलक। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहा मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।